सूत्र समझदारी को सेतु FM अध्यात्म ज्योति। सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चाँदी का एक्सक्लुसिव गहना लगायत भाँडाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चाँदी का सामानहरूको लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर पैलेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं पिउखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा

एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम भजन सुमिरन। प्रत्येक शनिश्चरबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। अध्यात्म ज्योतिको यो प्रस्तुतिका प्रायोजक शुद्धताको सुनौलो परम्परा जय माता दी गोल प्यालेस शुक्रपथ न्यू रोड। प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश शुभेच्छा र प्रेरक प्रसङ्गका साथमा कार्यक्रम शुभ प्रभात सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्जमा। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज में। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदीका हरेक प्रकारका सामग्रीका लागि प्रसिद्ध सिल्भर स्टेट धर्मपथ।

विकास का आयोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेश में निर्मित चांदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ को विज्ञापन गर्न इच्छुक महानुभाव सम्पर्क हेतु टेलिफोन नम्बर 9841289820 9841289820 लोकप्रिय प्रतिष्ठित रेडियो अध्यात्म ज्योतिमा विज्ञापन दिई आफ्नो व्यापार व्यवसायको प्रवर्धनका साथै आध्यात्मिक यात्रालाई टेवा दियौं। विज्ञापन सहयोगको लागि सम्पर्क फोन नम्बर 9841289820 9841289820 विज्ञापन दिई आफ्नो व्यापार व्यवसायको प्रवर्धनका साथै आध्यात्मिक यात्रालाई टेवा दियौं।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: भजन सुमिरन सुमिरन अध्यात्म ज्योति को यो प्रस्तुति का प्रायोजक शुद्धता को सुनौलो परंपरा जय माता दी गोल पैलेस शुक्रपथ न्यूरो।

0: क्याप्टेन रेग्मीज फार्म हाउस, कम्तानको बगैंचा, बेलकोटगढी, मदानपुर 12, देउराली।
1: सम्पर्क नम्बर
0: 9841470161,
1: 9032454,
0: 9549528781।

0: कार्यक्रम अध्यात्म ज्योतिको अबको प्रस्तुति कार्यक्रम ओशो प्रवचन ओशो सन्देश।
1: बुद्ध ने परम ज्ञान के पहले 6 वर्ष तक महातपश्चर्या की, बहुत गुरुओं के पास गए, बहुत गुरुओं की सेवा में रहे, जो जो कहा गया वही किया, जिसने जो साधना बताई वही साधी, और हर साधना के बाद पाया संसार समाप्त नहीं हुआ। हर साधना के बाद पाया कि मूल रोग मिटा नहीं, अहंकार शेष है। हर गुरु से उन्होंने कहा अहंकार मिटा नहीं, आपने जो किया सब मैंने किया, और उन्होंने किया इतनी निष्ठा से था कि कोई गुरु ये नहीं कह सका कि तुमने ठीक से नहीं किया इसलिए अहंकार नहीं मिटा। उनकी निष्ठा अपूर्व थी, उन्होंने जो किया समग्र भाव से किया, इसलिए कोई गुरु ये ना कह सका। नहीं तो गुरु को एक सुविधा रहती कि हम क्या करें, जो कहा वो तुमने किया नहीं इसलिए हुआ नहीं। बुद्ध से ये बात कही नहीं जा सकती थी। इसी बात के कारण दुनिया में झूठे गुरु भी चल जाते। ये बात बड़ी तरकीब की, किसी ने तुमसे कहा कि देखो ध्यान करो लेकिन मंत्र पढ़ते वक्त बंदर का स्मरण मत करना। अब तुम बैठे ध्यान करने, बंदर का स्मरण आने वाला है। अब तुम लाख उपाय करो, जितने तुम उपाय करोगे उतना ही बंदर का स्मरण आएगा। और तुम गुरु से जाके कहोगे क्या करूं कुछ हो नहीं रहा, वो कहेगा मैं भी क्या करूं शर्त पूरी नहीं कर रहे। वो बंदर का स्मरण नहीं आना चाहिए। ऐसी अस्वाभाविक शर्तें बांध रखी हैं जिनके कारण तुम कभी इस स्थिति में नहीं पहुंच सकते कि समझ लो कि जो मार्ग तुमने पकड़ा वो ठीक है या गलत है, क्योंकि कभी तुम मार्ग को पूरा ही नहीं कर पाते तो ठीक गलत का निर्णय कैसे हो। इसलिए झूठे गुरु भी चल जाते, मिथ्या गुरु भी चल जाते। वो सदा उनके लिए एक सुविधा है, सुरक्षा है कि मैंने जो कहा वो तुमने किया नहीं। करवाने को वो इस तरह की बातें कहते हैं जो कि अमानवीय है, जो कि शायद की नहीं जा सकती, या जिन्हें करने के लिए कोई महासंकल्पवान व्यक्ति चाहिए। बुद्ध वैसे ही व्यक्ति थे, सब दांव पर लगाया था। ऐसे कुनकुने आदमी नहीं थे कि चलो मिल जाए ईश्वर तो ठीक है, जीवन जाए तो ठीक, मगर ईश्वर को मिलना, सत्य को मिलना, सब खो जाए उसके लिए राजी थे। जुआरी थे, छत्री थे, दांव पर लगाना जानते थे, कोई दुकानदार नहीं थे। कुछ ऐसा थोड़ा बहुत करने से, घंटी बजाने से, राम राम जपने से मिल जाएगा, ऐसी उनको आस्था भी नहीं थी। तो जिस गुरु ने जो कहा, बिल्कुल मूढ़तापूर्ण बातें कही वो भी उन्होंने की। किसी ने कहा कि रोज रोज भोजन कम करते जाओ, रोज भोजन कम करते जाओ, जब एक चावल का दाना ही भोजन बचे तब ज्ञान होगा। ऐसे वो कम करते गए, 6 महीने में 1 चावल का दाना ही भोजन बचा, ज्ञान तो नहीं हुआ, शरीर नष्ट हो गया। निरंजना नदी को पार करते थे, पार ना कर सके, छोटी सी नदी, कोई बड़ी नदी नहीं, थक के गिर गए, एक जड़ को पकड़ के रुके रहे, जड़ को भी पकड़ने की ताकत न थी। तब स्मरण आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं, इस तरह शरीर को नष्ट करके सिर्फ शक्ति खो गई, नदी पार कर नहीं सकता, भव सागर पार करने का इरादा रख रहा हूं। बुद्ध बहुत गुरुओं के पास गए लेकिन जहां गए जो कहा वही किया, फिर भी कुछ सफल ना हुआ। गुरुओं ने उनसे क्षमा मांग ली। उनकी इस घटना को पढ़ के मुझे हमेशा खलील जिब्रान की कहानी याद आती। एक आदमी गांव गांव घूमता था, वो कहता था जिसको ईश्वर से मिलना हो मेरे साथ आओ, मुझे पता है मैं ईश्वर तक पहुंचा दूंगा, कहां पहाड़ों में रहता है मुझे मालूम। मगर किसी को पहली तो बात ईश्वर से मिलना ही नहीं। लोग कहते कि जब मिलना होगा जरूर आपके पास आएंगे। लोग उनको दान भी देते, उनकी पूजा भी करते, उनको भोजन भी करवाते, कहते महाराज अब आप जाओ, ईश्वर से किसको मिलना है। लोग कहते अभी जिंदगी में और 1000 काम है, आखिर में जब मिलने की इच्छा आएगी जरूर आपके पास आएंगे। ऐसे धंधा चलता था। ना कोई मिलना चाहता था, ना कोई मिलने की झंझट आती थी। मगर एक गांव में एक आदमी झंझट ही मिल गया। उसने कहा अच्छा गुरुदेव हम चलते हैं, चलो। गुरु ने सोचा कि कुछ भटकाएंगे जंगलों में, कुछ दिन अपने आप थक जाएगा। मगर वो भी एक था, वो महागुरु था, वो थके ही नहीं। वो तो रोज सुबह उठ के कि गुरुदेव कितनी देर और लगेगी, अब कहां तक और चलना है। उसने गुरु को थका मारा, 6 साल पहाड़ों में घूमते रहे, गुरु को मार ही डाला उसने। गुरु को भी पता हो तो कहीं पहुंचा दे, पहुंचाया कहां, चक्कर काटते रहे पहाड़ों कि भाई अब आता अब आता। एक दिन गुरु ने कहा तो हदोगी मेरी जिंदगी खराब कर देगा, अपनी तो कर ही रहा है, ये मेरी भी जिंदगी खराब कर देगा। उसने उसके हाथ जोड़े और कहा महाराज मुझे रास्ता पता था, मगर जब से तुम्हारा सत्संग हुआ सब भूल गए। अब ये परमात्मा का मुझे भी मिलना नहीं हो रहा है, अब तुम मुझे बख्शो। मेरे सत्संग में तुम तो नहीं पहुंच सकते, तुम्हारे सत्संग में मैं भटक गया, अब आप क्षमा करो, अब आप किसी और गुरु का पीछा पकड़ो। ऐसे ही बुद्ध थे, जिसने जो कहा पूरा किया। हर गुरु ने कहा कि अब आप और कहीं जाएं, किसी और को, क्योंकि इनको देख के दूसरे से भागने लगे ना कि भी इतना मेहनत करके जब इस आदमी को नहीं मिला तो हम तो इतनी मेहनत कर भी नहीं सकते, हमको तो कैसे मिलने वाला है। अंततः बुद्ध ने सारे गुरु छोड़ दिए, अंततः बुद्ध ने सारे पथ और सारे मार्ग छोड़ दिए, सारी विधियां छोड़ दी। जब उन्होंने सब छोड़ दिया तब मिला। अपूर्व घटना घटी, एक रात उन्होंने निर्णय ही कर लिया कि अब मुझे खोजना ही नहीं, खोज की वासना भी छोड़ दी, सत्य को पाने की वासना भी तो वासना ही है, वो भी छूट गई। उस रात सो गए वृक्ष के तले, कोई चिंता नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं, न धन न ध्यान न पद न परमात्मा, कुछ पाना ही नहीं। चित्त एकदम विलुप्त हो गया, क्योंकि चित्त जीता है पाने की आकांक्षा से। चित्त का प्राण ही पाने में, कुछ पालू कुछ मिल जाए, महत्वाकांक्षा चित्त की आत्मा है। उस क्षण कोई महत्वाकांक्षा ना थी। उस सुबह जब बुद्ध की आंखें खुली, आखिरी तारा डूबता था रात का, और उस पे डूबते डूबते ही उनका भीतर का तारा उग आया, हो गया। मगर ये स्वयं से हुआ। ये जो पंचवर्गीय भिक्षु हैं, ये 5 भिक्षु बुद्ध के शिष्य थे। जब बुद्ध एक एक चावल भोजन करते थे तब ये 5 भिक्षु उनके शिष्य थे। वो बुद्ध को बड़ा गुरु मानते थे, क्योंकि इतना महातपस्वी, हड्डियां मात्र रह गई थी शरीर में, चमड़ी सूख गई थी, सुंदर देह एकदम काली पड़ गई थी, अस्थि पंजर रह गए थे। तब वो 5 भिक्षु उनको गुरु मानते थे। हालांकि उनको कुछ मिला नहीं था, मगर उनका त्याग उनको प्रभावित करता था। दुनिया में बड़े अजीब लोग हैं, उनको कौन सी चीज प्रभावित करती ये भी बड़ी सोचने जैसी बात। ये आदमी मरा जा रहा है, ये आत्महत्या में संलग्न है, और वो प्रभावित हो रहे हैं। दुनिया में बड़े दुष्ट लोग हैं। तुम ख्याल रखना, जब तुम उपवास करो और कोई तुम्हारी आके प्रशंसा करे, समझ लेना कि ये आदमी क्या चाहता है, ये तुम्हें भूखा मरवाना चाहता। तुम सिर के बल खड़े हो जाओ और ये आदमी कह वाह आप बड़े महातपस्वी, इससे सावधान रहना, ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा, ये चाहता है तुम सिर के बल खड़े रहो। दुनिया में लोग दूसरों को दुखी देने देख के मजा लेते, इसलिए मुनियों साधुओं तपस्वियों के पास दुष्ट प्रकृति के लोग इकट्ठे हो जाते। वो कहते महाराज गजब कर रहे, कांटों पे लेटे, भीड़ लगा लेते, धूप में खड़े हैं, भयंकर गर्मी पड़ रही है, और गुरुदेव आप धुनी रमाए बैठे, आग जला के ताप रहे, गजब। ये जो लोग हैं इनको मनोविज्ञान में खास शब्द है, वो कहते हैं मैसोचिस्ट। ये पर दुखवादी है, ये दूसरा सतारा है अपने को, इसमें इनको मजा आता है। ये वैसे ही लोग हैं जैसे कोई आदमी अपने शरीर में घाव कर ले और छुरी से घाव को कुरेदता रहे, और ये कहें वाह आप बड़ी महासाधना कर रहे हैं, आपका जुलूस निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे। पर्युषण में आपने 10 दिन व्रत किए, उपवास किए, शोभा यात्रा निकालेंगे। भूखे रहे आप महीने भर, बड़ा उपवास किया, आप महातपस्वी। तुम दुख दो अपने को और दूसरे लोग तुम्हें आदर देते, जरूर इसमें कुछ राज है। जब वे तुम्हें आदर देते तुम अपने को और दुख देने को राजी हो जाते, क्योंकि अहंकार की तृप्ति होती और उनकी भी जरूर कोई तृप्ति हो रही। लोग जासूसी किताबें पढ़ते हैं, क्यों? लोग जाके हत्याओं की फिल्म देखते हैं, डकैतियों की फिल्म देखते हैं, क्यों? तुमने कभी पूछा, रास्ते पे दो आदमी लड़ रहे हो, तत्काल भीड़ खड़ी हो जाती। तुम्हारी मां बीमार है, दवा लेने जा रहे थे, साइकिल टिका के किनारे तुम भी खड़े हो गए कि मां समझे मां की दवा में क्या है, घंटे दो घंटे की देर भी होगी चलेगा, मगर ये तमाशा छोड़ा नहीं जा सकता। और दो आदमी बिल्कुल लड़ने मारने को तैयार है, तुम्हारी भी उत्सुकता बढ़ती जाती कि अब कुछ होता ही है, अब कुछ होने वाला है। और अगर संयोग से कुछ ना हो तो तुम बड़े उदास लौटे हो, तुमने ख्याल किया है? कुछ ना हो, वो दोनों आदमी का अच्छा भाई क्या फायदा लड़ने झगड़ने से, एकदम गांधीवादी हो जाए कि चलो महात्मा गांधी की जय, क्या फायदा? हम तुमको मारे तुम हमको मारो, कोई सार नहीं। तो जितनी भीड़ खड़ी है वो उदास लौटेगी कि कुछ भी नहीं हुआ, घंटा भर खराब हुआ, गाली गलौज काफी बकी गई। लोग दूसरे के दुख में एक तरह का रस लेते और दूसरे के सुख से पीड़ित होते हैं। तुमने देखा, तुम बड़ा मकान बनाओ, पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ हो जाता। तुम सुखी दिखाई पड़ो, किसी को सुख नहीं होता। तुम स्वस्थ हो, किसी को अच्छा नहीं लगता। तुम खाते पीते मजे से जी रहे हो, तुम्हारे घर संगीत होता है, नाच होता है, सारा गांव तुम्हारे दुश्मन हो जाता है। गरीब भोगी है, भ्रष्ट है, नरक जाएगा। और तुम भूखे मरो, धूप में बैठ जाओ, घाव बना लो, सारे गांव की दया और सहानुभूति तुम्हारे लिए। तुम्हारे घर में आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते, वो कहते हैं बड़ा बुरा हो गया। और तुम्हारा घर बड़ा हो जाए और एक नई मंजिल बन जाए, कोई नहीं आता कहने के बड़ा अच्छा हो गया। जरा सोचना, जब अच्छा होता है कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हो गया, और जब बुरा होता है तब लोग कहने आते हैं कि भाई बहुत बुरा हो गया। मगर जब वो कहते हैं बहुत बुरा हो गया, तब उनकी आंखों में झांकना, तुम पाओगे वो रस ले रहे हैं, सहानुभूति में मजा आ रहा। तुम आज नीची हालत में हो, आज तुम पर दया करने का मौका मिला, ये मौका कभी मिला नहीं था। तुम कभी बुरी हालत में थे नहीं, आज तुम चारों खाने चित्त पड़े हो। आज कोई भी दया कर सकता, राह चलता राहगीर कह सकता है भाई बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसके भीतर देखो कुछ मजा ले रहा है। मनुष्य का मन बड़ा जटिल है। ये 5 भिक्षु बुद्ध की सेवा में रत रहे, लेकिन जब बुद्ध ने सब उपवास छोड़ दिया, तप छोड़ दिया, इन्होंने बुद्ध को छोड़ दिया। इन्होंने कहा ये भ्रष्ट हो गया, गौतम भ्रष्ट हो गया, अब ये काम का नहीं रहा, ये पतित हो गया। जब तक ये गौतम अपने को सता रहा था, महातपस्वी था, जिस दिन बुद्ध ने ये सब व्यर्थ मूढ़ता छोड़ दी, ये आत्महिंसा छोड़ दी, ये आत्मघात छोड़ दिया, उसी दिन 5 भिक्षुओं ने उनको छोड़ दिया। उन्होंने कहा अब हमारे काम के ना रहे, अब हम कोई दूसरा गुरु खोजेंगे, वो उन्हें छोड़ के चले गए। उसी रात बुद्ध को ज्ञान हुआ, जिस सांझ को 5 भिक्षु छोड़ के चले गए, उस रात बुद्ध को ज्ञान हुआ। दूसरे दिन सुबह बुद्ध को पहली याद यही आई कि वो बेचारे 5 इतने दिन मेरे साथ रहे और आखिरी घड़ी छोड़ के चले गए। अब जबकि मेरे पास देने को कुछ था, लेने वाले नहीं, और जब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं था, मैं खुद ही मूर्ता और अंधकार से भरा था, तब वो मेरे पीछे लगे रहे। ऐसी उल्टी दुनिया है। इसलिए बुद्ध उनकी खोज करते हुए निकले कि वो जहां भी गए हों उनको जाके पहला संदेश उनको दिया जाए, यद्यपि वो मुझे त्याग गए हैं, यद्यपि उन्होंने मान लिया कि मैं भ्रष्ट हो गया, लेकिन मेरे साथ बहुत दिन रहे, इतना कर्तव्य मेरा है कि पहला संदेश उन्हीं को दूं। इसलिए बुद्ध ने पहला प्रवचन उन्हीं 5 भिक्षुओं को दिया। उनका पीछा करते बुद्ध सारनाथ तक आए, जहां जहां पता चला कि वो दूसरे गांव चले गए, बुद्ध वहां गए। सारनाथ जाके उन्होंने देखा एक वृक्ष के नीचे 5 भिक्षुओं को बैठे हुए। उन 5 भिक्षुओं ने देखा बुद्ध को आते हुए, वो बोले कि भ्रष्ट गौतम आ रहा। हम इसको नमस्कार ना करें, ये नमस्कार के योग्य भी नहीं, ये बिल्कुल पतित हो गया। तो वो पीठ करके बैठ गए। बुद्ध जब उनके पास गए, जब पास जाके खड़े हो गए और बुद्ध ने कहा, एक बार मेरी तरफ तो देखो, जिसे तुम छोड़ आए थे मैं वही नहीं हूं, आज जो आया है कोई और है, एक बार मेरी तरफ देखो। और उन चारों ने, पांचों ने आंख उठा के बुद्ध की तरफ देखा। पहले एक उनके चरणों में गिरा, फिर दूसरा, फिर पांचों उनके चरणों में गिरे, क्षमा मांगने लगे कि हमें क्षमा कर दें, हमने तो सोचा कि भ्रष्ट गौतम आ रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि सब रूपांतरित हो गया, ज्योति का उदय हुआ है, तुम प्रकाशित हो गए। कैसे प्रकाशित हुए, हमें राह बताओ। बुद्ध ने कहा, इसीलिए आया हूं। यह घटना सारनाथ जाते हुए रास्ते पर घटी। भगवान सर्वप्रथम ऋषिपतन मृगदाय में पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देने के लिए उरुवेला से काशी की ओर आ रहे थे। मार्ग में उन्हें एक उपक आजीवक मिला। आजीवक एक संप्रदाय था उस समय का, जो अब विनष्ट हो गया। बुद्ध और जैन दोनों संप्रदाय आजीवक संप्रदाय से बहुत मिलते जुलते, उसी की छायाएं इन पर, उसी के प्रतिबिंब है, उसी की ध्वनियां हैं। आजीवक संप्रदाय का एक भिक्षु मिला, उसने बुद्ध को देखा, वो चकित हो गया। ऐसा आदमी कभी नहीं देखा था, ऐसा ज्योतिर्मय, ऐसी शुद्ध इंद्रियां, ऐसी निर्मल आंखें, ऐसी निर्मल छाया, ऐसा चारों तरफ शांति का वातावरण। उसने कहा, आवुष, तेरी इंद्रियां परशुद्ध और बड़ी विमल हैं, तुम किस उद्देश्य से संन्यास्त हुए थे, अपना उद्देश्य मुझे भी बताओ, मैं भी खोज रहा हूं, कौन तुम्हारे गुरु, कौन तुम्हारे शास्ता, मैं भी खोज रहा हूं, मुझे अब तक ठीक गुरु नहीं मिला, ठीक मार्ग नहीं मिला, और तुम किसके धर्म को मानते हो, कौन से धर्म में तुम्हारी श्रद्धा है, किस शास्त्र पर तुम्हारा भरोसा है, तुम किन विधियों के अनुयायी हो। तब शास्ता ने उसे कहा, मेरे आचारी या उपाध्याय नहीं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मेरी किसी शास्त्र में श्रद्धा नहीं, मैंने जो पाया है अपने से पाया है। ये बुद्ध का परम संदेश, क्योंकि जो मिलना है वो तुम्हारे भीतर पड़ा है, कोई दूसरा थोड़ी देने वाला है। हस्तांतरण नहीं होता सत्य का, तुम्हारे भीतर पड़ा है। गुरु अगर कुछ करता है तो इतना ही कि तुम्हारे भीतर जो पड़ा है उसको ही पुकारता है, उसे तुम स्वयं भी पुकार सकते हो। गुरु अनिवार्य नहीं है बुद्ध के मार्ग पर, तुम स्वयं न पुकार सको तो उसकी जरूरत है, तुम स्वयं अपने को असमर्थ पाओ तो उसकी जरूरत है, अन्यथा तुम स्वयं भी पुकार सकते हो, क्योंकि खदान तुम्हारे भीतर है, तुम स्वयं भी खोज सकते हो। गुरु तुम्हें धन देगा नहीं, सिर्फ इतना ही कह देगा कि इस तरह मैंने अपने भीतर खोदा, इसी तरह तुम भी अपने भीतर खोद लो, मगर जो है तुम्हारे भीतर है, जो है तुम्हारे स्वभाव में छिपा है, जो है उसे तुम लेकर ही आए हो, वो तुम्हारा जन्म सिद्ध स्वभाव सिद्ध अधिकार है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने गुरुओं के द्वारा नहीं पाया, मेरा कोई आचार्य नहीं, मेरा कोई उपाध्याय नहीं। ऐसा नहीं कि मैं गुरुओं के पास नहीं रहा, रहा, लेकिन वहां मुझे कुछ मिला नहीं, और जब मिला तब मैं किसी गुरु के पास नहीं था, और जो मैंने पाया है वो कुछ ऐसा है कि अब मैं तुमसे कह सकता हूं कि उसे किसी और के पास लेने जाने की जरूरत नहीं, अपने भीतर ही चले जाओ तो मिल जाए। शास्त्रों में नहीं है, स्वयं में है, शब्दों और सिद्धांतों में नहीं, तुम्हारी चेतना में बसा है, तुम मंदिर हो, परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है। मैं सभी को परास्त करने वाला हूं, बुद्ध ने कहा, मेरे जितने शत्रु थे वे सब गए, मैं सब जानता हूं, जो जानने योग्य है वो मुझे दिखाई पड़ गया है, मैं सभी धर्मों, तृष्णा इत्यादि से मुक्त हो गया हूं, अलिप्त हो गया हूं, सर्व त्यागी हूं, सर्व त्यागी का अर्थ होता है मैंने त्याग को भी त्याग दिया है, मैं सब धर्मों से मुक्त हो गया हूं, मैंने जगत की तृष्णा तो छोड़ ही दी है, मोक्ष की तृष्णा भी छोड़ दी, मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है, मैं अब बिल्कुल निरुद्देश्य हूं, जैसे फूल खिलता निरुद्देश्य, जैसे सुबह सूरज निकलता निरुद्देश्य, ऐसा मैं निरुद्देश्य हूं, मेरा कोई लक्ष्य नहीं, सब लक्ष्य गए, सब उद्देश्य गए, सब भविष्य गया, मेरी कोई वासना नहीं, मोक्ष की भी नहीं, मैं तृष्णा के नाश से मुक्त हूं। ये बड़ा अजीब वचन, बुद्ध ये नहीं कहते कि मैं तृष्णा से मुक्त हूं, बुद्ध कहते हैं मैं तृष्णा से तो मुक्त हूं ही, मैं तृष्णा के नाश से भी मुक्त हूं, तृष्णा तो गई ही, अतृष्णा भी गई, नहीं तो उल्टा हो जाता है, संसार पकड़े थे पहले, फिर संसार तो छोड़ दिया, फिर संन्यास पकड़ लिया, मगर पकड़ कायम रही, धन पकड़े थे पहले, धन तो छोड़ दिया, अब निर्धनता पकड़ ली, मगर पकड़ जारी रही। बुद्ध कहते हैं परम त्याग तो तब है जब त्याग भी छूट जाए, परम संन्यास तो तब है जब संसार तो छूटे ही छूटे, संन्यास से भी मुक्ति हो जाए, नहीं तो वो भी पकड़ बन जाए, तो कुछ फायदा ना हुआ, मुट्ठी पूरी खुल जानी चाहिए। मैं तृष्णा से मुक्त, तृष्णा के नाश से मुक्त, मैं स्वयं ही विमल ज्ञान को जानकर जागा, मैं किसको गुरु कहूं। और इतना ही नहीं, वो कहते कि मैं किसको गुरु कहूं, वो कहते मैं किसको शिष्य सिखाऊं, न मैंने किसी से पाया, मैंने अपने भीतर पाया, तो जो मेरे पास आएंगे वो भी अपने भीतर ही पाएंगे, शिष्य कहने से क्या सार है। इसलिए बुद्ध ने कहा मैं मित्र हूं, न तो गुरु तुम्हारा, न तुम मेरे शिष्य, मैं मित्र हूं। और बुद्ध ने कहा कि मेरा जो भविष्य में पुनः आगमन होगा, मेरा नाम होगा मैत्रेय, तब मैं परिपूर्ण मित्र रूप में प्रकट होऊंगा। अंतिम दृश्य, एक बार देवताओं में यह प्रश्न उठा कि दानों में कौन दान श्रेष्ठ है, रसों में कौन रस श्रेष्ठ है, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ है, और तृष्णा छह को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सका। देवताओं ने सबसे पूछने के बाद इंद्र से पूछा, वह भी इसका उत्तर न दे सका। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने जेतवन में जाकर भगवान के पास आए, इन प्रश्नों को पूछा। भगवान ने कहा धर्म के अनुभव में सब प्रश्नों के उत्तर हैं, फिर प्रश्न बहुत नहीं है, एक ही है, सोचने मात्र से समाधान नहीं होगा, जागो, जागने में समाधान है, धर्म के अनुभव में समाधान है, सब व्याधियों के लिए एक ही औषधि है धर्म। तब उन्होंने ये सूत्र कहा, सब्वदानम धम्म दानम जिनाति सब्बम रसम धम्म रसो जिनाति सब्बम रति धम्म रति जिनाति तणक्यो सब दुखम जिनाति। धर्म का दान सब दानों में बढ़कर है, धर्म रस सब रसों में प्रबल है, धर्म में रति सब रतियों में बढ़कर है, और तृष्णा का विनाश सारे दुखों को जीत लेता है, और धर्म की उपलब्धि उससे होती, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। पहले इस दृश्य को हृदयंगम कर लें। एक बार देवताओं में प्रश्न उठा, देवताओं के पास कुछ और काम है भी नहीं, व्यर्थ की बकवास, देवता करेंगे भी क्या, काम तो वहां कुछ बचता नहीं, काम तो समाप्त हो गया, कल्प वृक्षों के नीचे बैठकर सभी इच्छाएं पूरी हो जाती, देवता सुख ही सुख में जीते, जीवन का बाहर का व्यवसाय तो बंद हो जाता है, जब बाहर का व्यवसाय बंद हो जाता तो चित्त के सब व्यवसाय शुरू हो जाते, तब बड़ा सोच विचार उठता, बड़े विवाद उठते। ख्याल करना, दर्शन शास्त्र तभी पैदा होता है जब पेट ठीक से भरा हो, भूखे भजन न हो ही गोपाला, भूखे भजन हो भी नहीं सकता, जीवन की सीढ़ियां हैं। शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएं तो मन की जरूरतें पैदा होती, शरीर की जरूरतें अधूरी रहें तो मन की जरूरतें कभी पैदा नहीं होती। अब कोई भूखा मर रहा है, उसको तुम कहो कि ये विथोवन का संगीत सुनो, वो तुम्हारा सिर फोड़ देगा। वो कहेगा मैं भूखा मर रहा हूं, विथोवन का संगीत आप कह क्या रहे, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और भूखे पेट में विथोवन का संगीत जाएगा कैसे, भूखा संगीत सुन कैसे सकता है। कोई भूखा मर रहा है और तुम कहते हो पढ़ो कालिदास की कविताएं, से बड़ा आनंद आएगा। वो कहता है कुछ रोटी मिल जाए, कालिदास आप पढ़ो, रोटी मुझे दे दो। एक सीढ़ी है, शरीर की जरूरत पूरी हो तो मन की जरूरत, मन की जरूरत में काव्य है, संगीत है, कला है। फिर मन की जरूरतें पूरी हो जाएं तो आत्मा की जरूरतें पैदा होती। जिसने अभी संगीत नहीं सुना और जिसने काव्य का रसास्वादन नहीं किया, वो धर्म के जगत में प्रवेश न कर सकेगा। और जिसने अभी दर्शन शास्त्र के ऊहा पोह में नहीं उलझन ली,

0: पुस्तक में तलाश करते धर्म के, पूरब के लोग हैरान होते हैं कि मामला क्या है। पूरब के लोग पश्चिम जा रहे हैं, कैसे अच्छी इंजीनियरिंग आ जाए, कैसे अच्छे डॉक्टर हो जाएं, कैसे टेक्नोलॉजी, कैसे विज्ञान, इसके लिए पश्चिम जा रहे हैं। पूरब के सोच विचार से लोग पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं कि एक डिग्री पश्चिम से और ले आएं, और पश्चिम से लोग डिग्रियां इत्यादि फेंक कर कूड़े करकट में डाल के, यहां मेरे सन्यासियों में कम से कम 20 PhD, तुम एक को भी ना पहचान पाओगे कि आदमी PhD, यहां कम से कम 50 MA, तुम एक को भी ना पहचान पाओगे, और ऐसा तो बहुत कम है कि ग्रेजुएट कोई ना हो, मगर तुम एक को ना पहचान पाओगे, सब कचरे में डाल के चले आए। दो कौड़ी की हो गई बात है, यहां कोई PhD हो जाता तो अखबारों में खबर छपती, जुलूस निकाला जाता। मैंने सुना इलाहाबाद में जब पहला आदमी मैट्रिक हुआ था तो हाथी पे बैठ के जुलूस निकाला।
1: हवस्त आदरणीय श्रोता, आजको यो प्रवचन श्रृंखला यति नै। यसको बाँकी अंश आगामी कार्यक्रममा सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।

0: Weekend Classic Radio Show.
1: हिंदी सिनेमा में देखा जाए तो काफी दिल टूटे हैं और कई मिले भी हैं। ये महानगरी जिंदगी का सफर तो कराती ही है, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री एक हम सफर दे जाती है। मेरा मतलब है कि हिंदी सिनेमा में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कब ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। रियल लाइफ पार्टनर रियल लाइफ पार्टनर बन जाते हैं। आज मैं एक ऐसी ही जोड़ी के बारे में बात करने वाली हूँ जिसने अपने प्यार के बीच कोई दीवार को नहीं आने दिया, ना लोगों को आने दिया, ना मजहब को आने दिया। वो एक्ट्रेस जो हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल है और वो एक्टर जो ओरिजिनल ही मैन है। मैं बात कर रही हूँ हमारे धर्म पाजी और हेमा जी की। वैसे सबको लगता है कि धर्म जी हेमा जी की पहली मुलाकात जो हुई थी वो तुम हसी मैं जवां की शूटिंग के दौरान हुई थी, लेकिन सच में वो इसके पहले भी मिल चुके थे। कहाँ और कैसे और वो क्या बात थी धर्म जी की जिसने हेमा जी का दिल चुरा लिया था, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले किशोरदा की आवाज में ड्रीम गर्ल फिल्म से ये गाना डेडिकेटेड टू द वेरी ब्यूटिफुल हेमा जी।

0: சாவேல் சுச்சேபாடி.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ.
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो.
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ.
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौ. जेजे ज्वेलर्स
4: प्रस्तुत छ. जेजे ज्वेलर्स. जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन. सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुस.
5: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि. सम्पर्क नम्बर 5320 4111 98020 76888.
4: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान.
6: FM AJ 104.8.

रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी के साथ में जो गाने हैं वो आपको सुना रही हूं, कुछ बेहतरीन गाने हैं चुन के लेकर आई हूं मैं आपके लिए, आपको ये गाने पसंद आ रहे हों। कभी कभी सोचती हूं अगर हम प्यार में उलझे नहीं होते तो आज जिंदगी इतनी सुलझी नहीं होती, है ना। ये एहसास ही कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली और स्ट्रांग कर देता है। कुछ देर पहले मैं आपको बता रही थी कि हमारे वीरू और बसंती का साथ जो है वो बहुत पुराना है। लोग मानते हैं कि तुम हंसी में जवां फिल्म की शूटिंग के दौरान इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है हुआ कुछ ऐसा था कि हमारी बसंती और वीरू पाजी मिले थे 1965 में एट द प्रीमियर ऑफ दिस फिल्म कॉल्ड आसमान महल। पृथ्वीराज कपूर जी की ये फिल्म थी और इसके प्रीमियर में हेमा जी आई थी और साथ में धर्म पाजी भी आए थे और उन्होंने ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ था, ऐसा हेमा जी रिकॉल करती हैं। शांत बैठे हुए थे, एकदम ऑपोजिट टू हिज ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी, जहां पर अग्रेसिव और एक्शन हीरो धर्म जी प्ले किया करते थे, वो एक्चुअली शांत बैठे हुए थे, ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहे थे। चेहरे पे एक तेज था और साथ में एक मुस्कुराहट भी थी। धर्म जी के जो स्ट्रांग फीचर्स थे उनके ऊपर हेमा जी ने अपना दिल दे दिया था। उसी समय उन्हें धर्म जी से प्यार हो गया था। लेकिन अगर प्यार 1965 में हो गया था तो शादी में 15 साल क्यों लग गए? 1980 में इन दोनों की शादी हुई थी, क्यों इतना समय लगा, ऐसा क्या हुआ बीच में, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। फिलहाल आपको सुना रही हूं रफी साहब की आवाज में प्रतिज्ञा फिल्म से ये गाना।

छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना है जट यमला पगला दीवाना हो रप्पा, किसी बात न जाना क्योंकि

प्यार वो नहीं जो मोम की तरह पिघला देता है, प्यार तो वो है जो पेड़ की तरह स्थिर रहकर जीना सिखा देता है। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आई होप आपको आज के चुने हुए गाने बहुत पसंद आ रहे हों, काफी दिल से मैंने ये गाने चुने हैं आपके लिए। अच्छा, हम हेमा जी और धर्मपा जी की जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं के गाने आपको सुना रहे हैं, तो आपको बताती हूँ काफी सारी रुकावटें आई थी इनके प्यार और शादी के बीच में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि हेमा जी बहुत एडमिंट थी, उन्हें अपना करियर पहले बनाना था और क्यों ना बनाए। एक बार तमिल फिल्म के डायरेक्टर श्रीधर जी ने हेमा जी को तमिल फिल्म वेनिराडाई, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, लेकिन इस नाम से एक फिल्म थी, उससे रिजेक्ट कर दिया था, ये कह के कि वो बहुत पतली हैं और स्टार मटेरियल नहीं है। इस बात को हेमा जी ने दिल पे ले लिया था, काफी हर्ट हुई थी वो ये सुनकर के। तब वो ज्यादा कुछ बड़ी नहीं थी, 15-16 साल की ही थी, लेकिन वो जो ह्यूमिलिएट हुई थी उस समय, तो उन्होंने खुद को प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन मेगा स्टार बन के रहेंगी। तो जब धर्म जी के साथ में उनके प्यार की शुरुआत हुई तो उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर तो था धर्म जी के लिए, लेकिन उन्होंने धर्म जी को सीधा बता दिया था कि मैं तुम्हारे साथ तभी जाऊंगी जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो जल्द ही सक्सेसफुल हो गई, और इंटरेस्टिंगली श्रीधर जी जिन्होंने उन्हें रिजेक्ट किया था 60s में, ही वॉज कंपेल्ड, उन्हें हेमा जी को अपनी मूवी में लेना ही पड़ा। और गहरी चाल करके ये फिल्म आई थी, जिसमें हेमा जी ने भी काफी हम्बल होकर के माफ किया श्रीधर जी को और ये फिल्म की थी। आपको पता है 1980 में शादी तो हो गई थी धर्मपा जी और हेमा जी की, लेकिन उसके लिए इन्हें अपना धर्म भी बदलना पड़ा था, क्योंकि धर्मेंद्र जी चाहते नहीं थे कि वो अपनी पहली बीवी को छोड़ें और फिर शादी करें। तो धर्म जी की पहली बीवी प्रकाश जी, जिनसे सनी और बॉबी हैं, उन्हें उन्होंने छोड़ा नहीं था और हेमा जी से शादी कर ली थी। वैसे आप जानते हैं कि हेमा जी को धर्म जी से पहले भी काफी सारे फिल्मी स्टार्स के रिश्ते आ चुके थे। कौन थे ये बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। धर्म जी और हेमा जी की जिंदगी के कुछ पन्ने जो हैं वो आज हम पलट रहे हैं, इनफैक्ट इनकी लव स्टोरी जो है उसमें अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अ टॉपिक दैट आई लव द मोस्ट। मैं बात कर रही थी हेमा जी के बारे में कि इनके दीवाने कुछ कम नहीं थे, आखिर तभी तो ये ड्रीम गर्ल थी, क्योंकि सबके सपनों की रानी तो हमारी हेमा मालिनी जी ही थी। आपको पता है फिल्म मेकर एक्टर गिरीश कर्नाड जी का रिश्ता जो है वो भी आया था हेमा जी के लिए। वो तो इनफैक्ट हेमा जी के माँ बाप ही लेकर के आए थे, उनको बड़े पसंद थे गिरीश जी और वो चाहते थे कि हेमा जी इनसे शादी कर लें, लेकिन हेमा जी ने मना कर दिया कि नहीं मुझे ये ज्यादा जमे नहीं। उसके बाद संजीव कुमार जी का दिल आया था हेमा जी पर, लेकिन उनमें इतना जिगरा नहीं था कि वो सामने सामने हेमा जी को बता दें अपने प्यार के बारे में। तो संजीव कुमार जी ने अपने दोस्त जितेंद्र जी को कहा था कि जाओ जाकर के तुम बात करो हेमा जी से। इनफैक्ट संजीव कुमार जी के तो इस प्रपोजल को मना कर दिया था हेमा जी ने, क्योंकि कुछ नशे की लत वगैरह थी जो संजीव कुमार जी को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी हेमा जी को। लेकिन जितेंद्र जी जहाँ ये मिडिल मैन बने हुए थे और संजीव जी के दिल की बातें हेमा जी को बताते थे, तो इस दौरान जितेंद्र जी का भी दिल आ गया था हेमा जी पर, इतना कि जितेंद्र जी ने प्रपोज किया हेमा जी को और इनकी साउथ में एंगेजमेंट भी होने वाली थी। तो जब सगाई तक बात पहुंच गई थी तब कैसे धर्म जी सामने आए और फिर अपने रिश्ते की बात की और सीन में वो आ गए, हीरो बन के आ गए, ही मैन बन के आ गए, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सुनाती हूँ आपको रजिया सुल्तान से।

तो जब सगाई तक बात पहुंच गई थी तब कैसे धर्म जी सामने आए और फिर अपने रिश्ते की बात की और सीन में वो आ गए, हीरो बन के आ गए, ही मैन बन के आ गए। बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले सुनाती हूँ आपको रजिया सुल्तान से।

0: क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। कुछ ही देर पहले मैं आपको बता रही थी हेमा जी और धर्म जी की लव स्टोरी के बारे में, आज उन्हीं के कुछ गाने आपको सुना रही हूं मैं। और मैं आपको बता रही थी कि कैसे जितेंद्र जी और हेमा जी की एंगेजमेंट होने वाली थी, चाहे शोभा जी थी उस समय कहीं ना कहीं दोस्त थी, थोड़ी पसंद थी जितेंद्र जी को, लेकिन हेमा मालिनी जी पर उनका दिल आया हुआ था, दोनों एंगेजमेंट करने वाले थे। और जब धर्म जी को इस बारे में पता चला तो उस समय सच में धर्म गरम हो गए थे, खूब गुस्सा आया धर्म पाजी को इस बात को सुनकर के कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो एक्चुअली मेरी ड्रीम गर्ल है। अपनी शूटिंग कैंसिल करा के सारा काम छोड़ के धर्म पाजी फ्लाइट लेकर के चेन्नई गए थे, जहां पर जीतू जी और हेमा जी की एंगेजमेंट होने वाली थी, और वहां पहुंच करके सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया था। और फाइनली फिर हेमा जी के मम्मी पापा चाहे पहले नहीं राजी हुए थे, लेकिन फिर बाद में धर्म पाजी ने कुछ ना कुछ करके उन्हें भी राजी कर लिया, एंगेजमेंट टूटी, और उसके बाद में धर्म पाजी का जो सीन है वो हेमा जी के सीन के साथ में जुड़ गया। वैसे धर्म पाजी वाज रियली रोमांटिक, हाँ वैसे धर्म पाजी वाज रियली रोमांटिक, हाँ। हेमा मालिनी जी को ज्यादा बाहर जाना, घूमना फिरना, डेट पे जाना या लंच पे जाना पसंद नहीं हुआ करता था, तो जितना समय बिता पाते थे धर्म जी हेमा जी के साथ में वो सेट्स पर ही होता था। तो मैंने सुना है शोले फिल्म की शूटिंग के टाइम पर जब भी इन दोनों के साथ में सीन होते थे, पास पास बैठते थे, रोमांटिक सीन होता था, तो धर्म जी पैसे खिला देते थे, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देते थे लाइट मैन को, जिससे कि वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कर देता था, लाइट में गड़बड़ी कर देता था, और बार बार वही सीन को शूट करना पड़ता था जिसमें धर्म जी और हेमा जी साथ में हैं और कुछ तो रोमांस चल रहा है। हाउ क्यूट इज दैट। तो चलिए ये एवरग्रीन जोड़ी जो है इन्हीं के नाम सुनते हैं अगला गाना। हमारे बॉलीवुड के राजा और जानी है हेमा जी और धर्म जी, तो राजा जानी फिल्म से ही सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में अगला गाना। सुनते रहिए आप वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।
1: दुनिया का मेला, मेला।

0: कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते।
1: One oh four eight.

0: आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी
1: 1962 का गीत नंबर 32 फिल्म 11,000 लड़कियां। बाप रे।

भाई फिल्मी दुनिया के लिए बहुत ही खास थे 60s के वो साल। 1962 की 30वीं पायदान पर जो गीत आया ना, वो शशि कपूर की एज अ हीरो शायद पहली ही फिल्म थी धर्मपुत्र। बहनों भाइयों जरा तैयार रहिएगा, आज के वॉल्यूम के आखिरी हिस्से में शशि कपूर की आवाज भी आने वाली है। और हाँ, धर्मपुत्र जो फिल्म थी गजब के डायरेक्टर यश चोपड़ा का दूसरा कदम था बेमिसाल तरक्की की राह पर। इससे कुछ पहले वो बीआर फिल्म्स ही के झंडे तले धूल का फूल भी बना चुके थे। दोनों बड़ी आदर्शवादी बामकसद फिल्में थी, लेकिन उनसे ये भी पता चलने लगा था कि आगे चलकर यश चोपड़ा रोमांस के भी कैसे कैसे गुल खिलाने वाले हैं।

ओहो भाई, मैं तो गीत में खो ही गया। खैर कोई बात नहीं, अब मैं फिर से जरा जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी बढ़ता हूँ आगे। अच्छा बहनों भाइयों, अब अपनी यादें ताजा करके मेरे साथ कदम रखिए 1962 की वार्षिक संगीत श्रेणी की पायदान नंबर 28 पर, जिस पर गीत था उस फिल्म का जिससे फिल्मी दुनिया में एक और जबरदस्त फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने अपना पहला कदम रखा था। वो इदारा था राजश्री प्रोडक्शंस, और वो फिल्म थी आरती।

0: अब यहाँ रुक कर हम सालाना संगीत सीढ़ी से जरा हटकर धीरे से बहनों और भाइयों आ जाएंगे गीत माला की छाओ में, मगर कुछ देर तक रहेंगे आरती ही के पास हैं। फिल्म आरती में हीरोइन मीना कुमारी की एक तरफ थे अशोक कुमार और दूसरी तरफ थे प्रदीप कुमार, जिनके बारे में यानी प्रदीप कुमार के बारे में एक बार मीना जी ने मुझे बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर बताया था।
1: पता नहीं कौन से जन्म का कर्ज देना है मुझे जो प्रदीप जी हर फिल्म में मेरे सामने होते हैं। बड़े भोले से आदमी हैं, बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं। एक्टिंग का तो शौक है ही, मगर शिकार का जुनून है। नैनीताल में हम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, भीमताल का एक किस्सा सुनिए। सड़क पर प्रदीप जी को एक तीतर नजर आ गया, बस लगे ढूंढने रिवॉल्वर। रिवॉल्वर मिला तो गोलियां ढूंढने लगे, बड़े जोर शोर से सड़क पर उतरे और फिर लौट कर अफसोसनाक खबर सुनाई कि चला गया। यानी बटेर इनकी गोलियों का इंतजार करता रहता तो बेहतर था।
0: मगर साहब, शिकारी प्रदीप कुमार और प्यारी मीना कुमारी की क्या जोड़ी जमी थी फिल्म आरती में। लीजिए उन्हीं दो पर फिल्माया हुआ एक ड्यूएट है आज की छाओ का

0: अच्छा साहब, अब गीतमाला की छाव में बैठकर एक बड़ी क्लासिक दुरंगी फिल्म 20 साल बाद का गीत सुनिए। भाई, इसे दुरंगी फिल्म इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये थी तो सस्पेंस फिल्म। जाने पहचाने सस्पेंस राइटर और मशहूर जासूसी डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स के जन्मदाता आर्थर कॉनन डॉयल की एक कहानी पर आधारित बड़ी डरावनी मर्डर मिस्ट्री। मगर साहब, चार क्या खूबसूरत रसीले अमर गीत थे उसमें। दो तो एन्यूअल गीतमाला तक पहुंचे और दो मधुर गीत रह गए छांव में, जिनमें से एक था ये
1: सपने।

0: अच्छा सस्पेंस थ्रिलर 20 साल बाद के खतरनाक खूनी विलन के रोल में थे न सिर्फ मशहूर कैरेक्टर एक्टर बल्कि पुराने रेडियो सिलोन के जमाने के बेमिसाल रेडियो कॉम्पेयर मनमोहन कृष्ण जिनके एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम फुलवारी में मैंने 1950-51 में हिंदी अनाउंसिंग का काम शुरू किया था। फिर एक साल बाद हमारा आपका गीतमाला प्रोग्राम भी शुरू हुआ जिसकी कहानी गीतमाला की छाओं के शुरू के कुछ वॉल्यूम्स में आपने सुनी ही होगी। बहरहाल 20 साल बाद देखकर मैंने मनमोहन कृष्ण साहब से पूछा था कि अरे मनमोहन चाचा आप इतने हंसमुख मिलनसार प्यारे इंसान हैं फिर आपने ऐसा खतरनाक कातिल विलन का रोल क्यों किया? तो मनमोहन जी बोले,
1: एक अर्ज कर दूं कि भगवान ने जो ये छोटी सी बुद्धि मुझे दी है ना उसी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मुझे हमेशा से पता था कि मैं कद में कितना 10 फुट मनफी 6 फुट हूँ और मेरा थोपड़ा किस किस्म का है, इस थोपड़े पर कौन कौन से थोपड़े अपना एक्सप्रेशन फिट कर सकेंगे। ये तो कहिए कि कैरेक्टर आर्टिस्ट था जो अब तक जिंदा रहा, हीरो होता तो ना जाने कब का गुजर चुका होता।
0: खैर बहनों भाइयों, अब फिल्म 20 साल बाद ही के जरिए हम फिर लौटते हैं 1962 की संगीत सीढ़ी की पायदानों पर जिसकी पायदान नंबर 27 पर।
2: जरा नजरों से कह दो जी

नंबर 25 पर था फिल्म स्त्री का गाना। हाँ साहब, महान सीनियर प्रोड्यूसर डायरेक्टर वी शांताराम की तरकश का एक और हसीन तीर।

0: जाएगा।
1: जॉय मुखर्जी और साधना की इस फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना को बड़े चाव से डायरेक्ट किया था राज खोसला ने, मगर प्रोड्यूसर थे फिल्माला के मशहूर मालिक एस मुखर्जी, जिनकी फिल्में बनाने की टेक्निक कई बार ये होती थी बहनों भाइयों कि वो पहले फिल्म के सारे रोमांटिक गीत तैयार कर लेते थे, फिर उसके बाद उन पर फिल्म की कहानी रची जाती थी। ये टेक्निक मुझे तो भाई बड़ी अजीब सी लगी, मगर मानना पड़ेगा मुखर्जी साहब की कई फिल्में इसी टेक्निक पर बनी और जबरदस्त हिट हुई। बहरहाल अब आगे बढ़िए साहब, सामने है उस वर्ष का गीत नंबर 23।

सर, मैं तो भाई अमीन सायानी हूँ और आपके साथ 1962 की पायदान नंबर 23 पर फिल्म मैं चुप रहूंगी के गीत की झलक सुन रहा था। अब हम नंबर 22 पर सुनेंगे झलक फिल्म बात एक रात की।

0: आपकी 1962 के एनुअल प्रोग्राम की यादें ताजा करने के लिए अब हिट पायदान नंबर 21 की हसीना अपनी फिल्म का नाम खुद बताएगी।
1: वाह,

0: और बहनों भाइयों, अब ये देखिए सुहाने बादल छा गए और हम फिर छाओं में आ गए। तो 1962 की छाओं का ये सिलसिला शुरू करते हुए आइए हम सभी मर्द झूम के बन जाएं दिलीप कुमार, और लेडीज आप चाहें तो वैजयंती माला बनकर देख सकती हैं हमारा झूमना और हमारा नयन लड़ाना।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: बहनों और भाइयों, आपको शायद पता नहीं होगा, इस फिल्म संगीत सम्राट तानसेन के संगीतकार एसएन त्रिपाठी इसके डायरेक्टर भी थे जी। अरे बड़े बहुरंगी कलाकार थे एसएन त्रिपाठी साहब, लिखते भी थे और बड़े जबरदस्त कैरेक्टर एक्टर भी थे। लीजिए इसके बारे में उन्हीं से सुनिए।
1: कहा गया है ना कि पानी तेरा रंग कैसा तो जिस बर्तन में डालो वैसा। अपने आप को आसानी से किसी भी रंग में ढाल लेने की कला मुझ में बचपन से ही रही है, और फिर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो कोई भी मुझे जिस रूप में देख सुनकर खुश होना चाहता है, मैं उसी रूप में उसके सामने आने का प्रयत्न करता हूँ।
0: और अब त्रिपाठी जी का बोला हुआ एक मशहूर डायलॉग सिर्फ दो शब्दों का सुनिए।
1: खुल जा सिम सिम।

0: मनशान्ति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में

0: और उस साल के एक और बड़े मधुर गीत की जो फिल्म थी ना, उसकी कोई भी चीज ज्यादा मशहूर नहीं हुई बहनों भाइयों। उसके बड़े गुणी नौजवान म्यूजिक डायरेक्टर रॉबिन बैनर्जी भी ज्यादा आगे नहीं आ पाए, और फिल्म का नाम अंग्रेजी में पढ़ने पर लगता था कि ये शायद कुछ गेज के बारे में फिल्म होगी, सखी रॉबिन, मगर फिर ख्याल आया कि ये सखी नहीं सखी हैं, यानी उदार। तो मेरा ख्याल है ये शायद रॉबिन हुड की कहानी होगी ना। खैर कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए।
1: तुम जो

0: चित्रगुप्त के शानदार संगीत से सजे हुए इस गीत को दो मंगेशकर बहनों ने गाया था, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। तो भाई क्यों ना आज हम छोटी बहन उषा की आवाज में बड़ी दीदी लता के बारे में कुछ सुन लें।
1: दीदी सबसे बड़ी और मेरे पिताजी जाने के बाद पूरा परिवार उसने संभाला। हम लोग उसको बोलते थे पिताजी की जगह वो आ गई हैं। उस बहुत शांत स्वभाव की है, कुछ भी उसके मन के खिलाफ भी बात हो जाए तो कुछ बोलेगी नहीं, शांत बैठी रहेगी और सबको संभालने में वो आगे कदम होता है उसका। लेकिन कभी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए देखा नहीं मैंने। और ज्यादातर उसका संगीत या हिंदी काव्य उर्दू काव्य में ज्यादा ध्यान होता है और ज्यादा ज्यादा म्यूजिक की बातें होती हैं।
0: अच्छा, दगाबाज हो बांके पिया वाली फिल्म यानी बर्मा रोड में लता जी का गाया हुआ एक प्यारा सोलो भी था साहब, जो मेरा ख्याल है चित्रगुप्त जी की सबसे नाजुक और स्वीट तर्जों में गिना जा सकता है। उसके बोल थे, जुल्फें उलझी हैं मेरे कंगना में आके छोड़ा जा सनम। मगर भाई वो गीत अच्छी क्वालिटी में मुझे नहीं मिल पाया, आपको मिल जाए तो जरूर सुनिएगा। हैं, खैर अब ये बताइए बहनों और भाइयों कि अब तो आखिर आपने मुझ पर हंसना बंद कर दिया है ना जी? आप हंस नहीं रहे, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। वेरी गुड।

0: मुझे देख कर
1: ये गीत था वार्षिक पायदान नंबर 20 पर और इसकी फिल्म थी ओ एक मुसाफिर एक हसीना जया और नंबर 19 पर था फिल्म आरती का एक और बड़ा ही भावुक गीत।

0: बहन और भाइयों हो जाइए तैयार, बड़े प्यारे बड़े हैंडसम बड़े जेंटलमैन हीरो शशि कपूर की आवाज सुनने के लिए। शशि कपूर ने एक बार अपने बड़े मजेदार स्टाइल में मुझे बताया था कि शुरू शुरू में उन्हें फिल्म लाइन में एस्टेब्लिश होने के लिए कैसी तकलीफ का सामना करना पड़ा।
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियों की वजह से मुझे फिल्मों में एज एन एक्टर आना पड़ा, नहीं तो शायद थिएटर में ही काम करते रहता। अच्छी खासी प्यारी स्ट्रगल रही। धर्म मनोज मैं इधर उधर घूमते रहते थे, एक ही बेंच में बैठे रहते थे, एक दूसरे के कंधे पे रोते रहते थे कि यार काम वाम नहीं मिलता क्या करें भाई। और मनोज धर्म और मैं हम लोग एक ही जॉब के लिए जाया करते थे और मनोज इस पंडित को पिक्चरें मिल जाती थी। धर्म हमेशा कहा करता था इसे क्यों पिक्चरें मिलती हैं। और खैर वो हम तीनों में से वही उस वक्त गुड लुकिंग था और बातचीत तो खूब कर लेता था जो कि धर्म और मैं नहीं कर पाते थे। तो साहब वो स्ट्रगल पीरियड अच्छा ही रहा।
0: और फिर जिन पहली पहली फिल्मों में उन्हें काम मिला ना, जैसे धर्मपुत्र और चार दीवारी, वो थी तो बड़ी ही खूबसूरत, लेकिन शशि कपूर के करियर को उनसे खास मदद नहीं मिली। और आखिर उनके करियर पर कामयाबी की किरणें बिखरने लगी किस फिल्म से?

अब आगे है झलक पायदान नंबर 15 की, जिस पर कल्पना कीजिए कि शायद संगीत के एक मुसाफिर अमीन सायानी ने अपनी एक हसीना गीतमाला से क्या कहा होगा।

दिया के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। One oh four eight.

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि।

दोस्तों, आप सबको देखकर मेरा कलेजा दुगना हो गया है। हमारी भी अब यही कोशिश है कि इस शाम का आप पूरा पूरा मजा लेकर घर लौटें। आज की शाम की इब्तिदा हम कर रहे हैं एक गजल से। शायर हैं जनाब निदा फाजली, उसके बाद चंद नई गजलें पेश करेंगे।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक शूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

0: ओल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM AJ 104.8 MHz।

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। 1962 का गीत नंबर 32, फिल्म 11,000 लड़कियां।

फिल्मी दुनिया के लिए बहुत ही खास थे 60s के वो साल। 1962 की 30वें पायदान पर जो गीत आया ना, वो शशि कपूर की एज अ हीरो शायद पहली ही फिल्म थी धर्मपुत्र। बहनों भाइयों जरा तैयार रहिएगा, आज के वॉल्यूम के आखिरी हिस्से में शशि कपूर की आवाज भी आने वाली है। और हाँ, धर्मपुत्र जो फिल्म थी, गजब के डायरेक्टर यश चोपड़ा का दूसरा कदम था बेमिसाल तरक्की की राह पर। इससे कुछ पहले वो बीआर फिल्म्स ही के झंडे तले धूल का फूल भी बना चुके थे। दोनों बड़ी आदर्शवादी बामकसद फिल्में थी, लेकिन उनसे ये भी पता चलने लगा था कि आगे चलकर यश चोपड़ा रोमांस के भी कैसे कैसे गुल खिलाने वाले हैं।

ओहो भाई, मैं तो गीत में खो ही गया। खैर कोई बात नहीं, अब मैं फिर से जरा जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी बढ़ता हूँ आगे। अच्छा बहनों भाइयों, अब अपनी यादें ताजा करके मेरे साथ कदम रखिए 1962 की वार्षिक संगीत श्रेणी की पायदान नंबर 28 पर, जिस पर गीत था उस फिल्म का जिससे फिल्मी दुनिया में एक और जबरदस्त फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने अपना पहला कदम रखा था। वो इदारा था राजश्री प्रोडक्शंस, और वो फिल्म थी आरती।

0: अब यहाँ रुक कर हम सालाना संगीत सीढ़ी से जरा हटकर धीरे से बहनों और भाइयों आ जाएंगे गीत माला की छाओ में, मगर कुछ देर तक रहेंगे आरती ही के पास हैं। फिल्म आरती में हीरोइन मीना कुमारी की एक तरफ थे अशोक कुमार और दूसरी तरफ थे प्रदीप कुमार, जिनके बारे में यानी प्रदीप कुमार के बारे में एक बार मीना जी ने मुझे बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर बताया था।
1: पता नहीं कौन से जन्म का कर्ज देना है मुझे जो प्रदीप जी हर फिल्म में मेरे सामने होते हैं। बड़े भोले से आदमी हैं, बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं। एक्टिंग का तो शौक है ही, मगर शिकार का जुनून है। नैनीताल में हम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, भीमताल का एक किस्सा सुनिए। सड़क पर प्रदीप जी को एक तीतर नजर आ गया, बस लगे ढूंढने रिवॉल्वर। रिवॉल्वर मिला तो गोलियां ढूंढने लगे, बड़े जोर शोर से सड़क पर उतरे और फिर लौट कर अफसोसनाक खबर सुनाई कि चला गया। यानी बटेर इनकी गोलियों का इंतजार करता रहता तो बेहतर था।
0: मगर साहब, शिकारी प्रदीप कुमार और प्यारी मीना कुमारी की क्या जोड़ी जमी थी फिल्म आरती में। लीजिए उन्हीं दो पर फिल्माया हुआ एक ड्यूएट है आज की छाओ का।

0: अच्छा साहब, अब गीतमाला की छाव में बैठकर एक बड़ी क्लासिक दुरंगी फिल्म 20 साल बाद का गीत सुनिए। भाई, इसे दुरंगी फिल्म इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये थी तो सस्पेंस फिल्म। जाने पहचाने सस्पेंस राइटर और मशहूर जासूसी डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स के जन्मदाता आर्थर कॉनन डॉयल की एक कहानी पर आधारित बड़ी डरावनी मर्डर मिस्ट्री। मगर साहब, चार क्या खूबसूरत रसीले अमर गीत थे उसमें। दो तो एन्यूअल गीतमाला तक पहुंचे और दो मधुर गीत रह गए छांव में, जिनमें से एक था ये
1: सपने।

0: अच्छा सस्पेंस थ्रिलर 20 साल बाद के खतरनाक खूनी विलन के रोल में थे, न सिर्फ मशहूर कैरेक्टर एक्टर बल्कि पुराने रेडियो सिलोन के जमाने के बेमिसाल रेडियो कॉम्पेयर मनमोहन कृष्ण, जिनके एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम फुलवारी में मैंने 1950-51 में हिंदी अनाउंसिंग का काम शुरू किया था। फिर एक साल बाद हमारा आपका गीतमाला प्रोग्राम भी शुरू हुआ, जिसकी कहानी गीतमाला की छाओं के शुरू के कुछ वॉल्यूम्स में आपने सुनी ही होगी। बहरहाल 20 साल बाद देखकर मैंने मनमोहन कृष्ण साहब से पूछा था कि अरे मनमोहन चाचा, आप इतने हंसमुख मिलनसार प्यारे इंसान हैं, फिर आपने ऐसा खतरनाक कातिल विलन का रोल क्यों किया? तो मनमोहन जी बोले,
1: एक अर्ज कर दूं कि भगवान ने जो ये छोटी सी बुद्धि मुझे दी है ना, उसी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मुझे हमेशा से पता था कि मैं कद में कितना 10 फुट -6 फुट हूँ और मेरा थोपड़ा किस किस्म का है, इस थोपड़े पर कौन कौन से थोपड़े अपना एक्सप्रेशन फिट कर सकेंगे। ये तो कहिए कि कैरेक्टर आर्टिस्ट था जो अब तक जिंदा रहा, हीरो होता तो ना जाने कब का गुजर चुका होता।
0: खैर बहनों भाइयों, अब फिल्म 20 साल बाद ही के जरिए हम फिर लौटते हैं 1962 की संगीत सीढ़ी की पायदानों पर, जिसकी पायदान नंबर 27 पर।
2: जरा नजरों से कह दो जी,

नंबर 25 पर था फिल्म स्त्री का गाना। हाँ साहब, महान सीनियर प्रोड्यूसर डायरेक्टर वी शांताराम की तरकश का एक और हसीन तीर।

आइए फिर एक बार गीतमाला की छाव में। और गीतमाला की छाव में की सुनने वालों, क्या पादान नंबर 24 के गीत के साथ मैं भी आपसे कह सकता हूँ कि

0: जाएगा।
1: जॉय मुखर्जी और साधना की इस फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना को बड़े चाव से डायरेक्ट किया था राज खोसला ने, मगर प्रोड्यूसर थे फिल्माला के मशहूर मालिक एस मुखर्जी, जिनकी फिल्में बनाने की टेक्निक कई बार ये होती थी बहनों भाइयों कि वो पहले फिल्म के सारे रोमांटिक गीत तैयार कर लेते थे, फिर उसके बाद उन पर फिल्म की कहानी रची जाती थी। ये टेक्निक मुझे तो भाई बड़ी अजीब सी लगी, मगर मानना पड़ेगा मुखर्जी साहब की कई फिल्में इसी टेक्निक पर बनी और जबरदस्त हिट हुई। बहरहाल अब आगे बढ़िए साहब, सामने है उस वर्ष का गीत नंबर 23।

खैर मैं तो भाई अमीन सायानी हूँ और आपके साथ 1962 की पायदान नंबर 23 पर फिल्म मैं चुप रहूंगी के गीत की झलक सुन रहा था। अब हम नंबर 22 पर सुनेंगे झलक फिल्म बात एक रात की।

पर आपकी 1962 के एनुअल प्रोग्राम की यादें ताजा करने के लिए अब हिट पायदान नंबर 21 की हसीना अपनी फिल्म का नाम खुद बताएगी।

0: और बहनों भाइयों, अब ये देखिए सुहाने बादल छा गए और हम फिर छाओं में आ गए। तो 1962 की छाओं का ये सिलसिला शुरू करते हुए आइए हम सभी मर्द झूम के बन जाएं दिलीप कुमार। और लेडीज, आप चाहें तो वैजयंती माला बनकर देख सकती हैं हमारा झूमना और हमारा नयन लड़ाना।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: थई चटई चटई थई थई झाक दिनक दिन थाक तिनक तिन धाक दिनक दिन थाक तिनक तिन धा
1: आंख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: बहनों और भाइयों, आपको शायद पता नहीं होगा, इस फिल्म संगीत सम्राट तानसेन के संगीतकार एसएन त्रिपाठी इसके डायरेक्टर भी थे जी। अरे बड़े बहुरंगी कलाकार थे एसएन त्रिपाठी साहब, लिखते भी थे और बड़े जबरदस्त कैरेक्टर एक्टर भी थे। लीजिए इसके बारे में उन्हीं से सुनिए।
1: कहा गया है ना कि पानी तेरा रंग कैसा तो जिस बर्तन में डालो वैसा। अपने आप को आसानी से किसी भी रंग में ढाल लेने की कला मुझ में बचपन से ही रही है, और फिर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो कोई भी मुझे जिस रूप में देख सुनकर खुश होना चाहता है, मैं उसी रूप में उसके सामने आने का प्रयत्न करता हूँ।
0: और अब त्रिपाठी जी का बोला हुआ एक मशहूर डायलॉग सिर्फ दो शब्दों का सुनिए।
1: खुल जा सिम सिम।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

0: और उस साल के एक और बड़े मधुर गीत की जो फिल्म थी ना, उसकी कोई भी चीज ज्यादा मशहूर नहीं हुई बहनों भाइयों। उसके बड़े गुणी नौजवान म्यूजिक डायरेक्टर रॉबिन बैनर्जी भी ज्यादा आगे नहीं आ पाए, और फिल्म का नाम अंग्रेजी में पढ़ने पर लगता था कि ये शायद कुछ गेस के बारे में फिल्म होगी, सखी रॉबिन, मगर फिर ख्याल आया कि ये सखी नहीं सखी हैं, यानी उदार। तो मेरा ख्याल है ये शायद रॉबिन हुड की कहानी होगी ना। खैर कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए।
1: तुम जो

0: एकदम होता है उसका। लेकिन कभी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए देखा नहीं मैंने। और ज्यादातर उसका संगीत या हिंदी काव्य उर्दू काव्य में ज्यादा ध्यान होता है और ज्यादा ज्यादा म्यूजिक की बातें होती हैं।
1: अच्छा, दगाबाज हो बांके पिया वाली फिल्म यानी बर्मा रोड में लता जी का गाया हुआ एक प्यारा सोलो भी था साहब, जो मेरा ख्याल है चित्रगुप्त जी की सबसे नाजुक और स्वीट तर्जों में गिना जा सकता है। उसके बोल थे, जुल्फे उलझी हैं मेरे कंगना में आके छोड़ा जा सनम। मगर भाई वो गीत अच्छी क्वालिटी में मुझे नहीं मिल पाया, आपको मिल जाए तो जरूर सुनेगा हैं। खैर अब ये बताइए बहनों और भाइयों कि अब तो आखिर आपने मुझ पर हंसना बंद कर दिया है ना जी, आप हंस नहीं रहे सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। वेरी गुड।

0: मुझे देखकर आपका मुस्कुराना।
1: ये गीत था वार्षिक पायदान नंबर 20 पर और इसकी फिल्म थी ओ एक मुसाफिर एक हसीना जिया, और नंबर 19 पर था फिल्म आरती का एक और बड़ा ही भावुक गीत।

0: अब बहन और भाइयों हो जाइए तैयार, बड़े प्यारे बड़े हैंडसम बड़े जेंटलमैन हीरो शशि कपूर की आवाज सुनने के लिए। शशि कपूर ने एक बार अपने बड़े मजेदार स्टाइल में मुझे बताया था कि शुरू शुरू में उन्हें फिल्म लाइन में एस्टेब्लिश होने के लिए कैसी तकलीफ का सामना करना पड़ा।
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियों की वजह से मुझे फिल्मों में एज एन एक्टर आना पड़ा, नहीं तो शायद थिएटर में ही काम करते रहता। अच्छी खासी प्यारी स्ट्रगल रही। धर्म मनोज मैं इधर उधर घूमते रहते थे, एक ही बेंच में बैठे रहते थे, एक दूसरे के कंधे पे रोते रहते थे कि यार काम वाम नहीं मिलता, क्या करें भाई। और मनोज धर्म और मैं हम लोग एक ही जॉब के लिए जाया करते थे और मनोज इस पंडित को पिक्चरें मिल जाती थी। धर्म हमेशा कहा करता था इसे क्यों पिक्चरें मिलती हैं। और खैर वो हम तीनों में से वही उस वक्त गुड लुकिंग था और बातचीत तो खूब कर लेता था जो कि धर्म और मैं नहीं कर पाते थे। तो साहब वो स्ट्रगल पीरियड अच्छा ही रहा।
0: और फिर जिन पहली पहली फिल्मों में उन्हें काम मिला ना, जैसे धर्मपुत्र और चार दीवारी, वो थी तो बड़ी ही खूबसूरत, लेकिन शशि कपूर के करियर को उनसे खास मदद नहीं मिली। और आखिर उनके करियर पर कामयाबी की किरणें बिखरने लगी किस फिल्म से?

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारम्भ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।